0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खासुल खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान खाना में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की,

0: एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में। तो
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
0: मेरी एजुकेशन तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है। मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे। उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से इसका?
0: जी, ऐसे ही है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एक स्टाइपन देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं और बाकी ट्यूशन फी एक वो सारी एग्जम्पशन होती है।
1: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपेंड से?
0: हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं, तो इधर की स्टाइपन वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ, ये रिसेंटली 1-2 साल में काफ़ी महंगाई हो गई है। उस पे अभी मतलब जितना स्टाइपन है शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
1: अच्छा, तो आप उसमें अपीयर हुए और उसमें कामयाब हुए, उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे? मास्टर्स, PhD, MPhil क्या?
0: जी, मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और PhD के
1: किस साल
0: लिए,
1: की बात है?
0: ये 2021 2021 में।
1: अच्छा,
0: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूँ तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम गिरा
1: जी,
0: था
1: पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत मशहूर हैं।
0: हिरोशिमा
1: सही
0: नागासाकी,
1: सही,
0: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूँ। वो कहते हैं बच के रहना, उधर अभी भी रेज हैं। वो पाकिस्तान में अभी तक है ना वो
1: मिसकंसेप्शन
0: कंसर्न।
1: है जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल इस वाले से। सही,
0: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह का कुछ नहीं है, रेज है ही नहीं,
1: खत्म। जी,
0: ख़त्म हो गई है। तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है और बोर्ड में बहुत पुरसकून जगह है नागासाकी।
1: तो
0: ऐसे
1: पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
0: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ।
1: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है।
0: जी, ऐसे
1: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नजर आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फर्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
0: खानों का एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म
1: क्या
0: के हैं।
1: फर्क है मसलन?
0: मसलन हम
1: मसाले, मिर्च की कमी?
0: मसाले, मिर्च और हैवी चीज़ें, फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है, तो
1: अच्छा,
0: इस वजह से मज़ा नहीं आता।
1: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने PhD के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
0: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था, और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते, इज्जत देते कि वो जापान, जापान का एक नाम है सिविलाइजेशन के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से। तो इस वजह से मेरा भी ज़्यादा दिल यही था कि मैं जापान जाऊँ।
1: पाकिस्तान में आप तकरीबन 16 साल पढ़ते रहे, फिर उसके
0: जी
1: बाद आप यहाँ पे आए,
0: जी जी
1: तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ तालीमी निज़ाम में? जो तालीम का तरीका है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि जापान आगे निकल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और एग्रीकल्चर भी इज़ आई थिंक नो एक्सेप्शन?
0: जी, ऐसे ही है। मेन वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है उसमें ज़्यादातर थोरेटिकल चीज़ें हैं और सिर्फ हम वही पुराने अंदाज में लेके चल रहे हैं, वही नोट्स हैं और पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, चलते हैं नहीं चलते, मतलब हम बहुत रिसर्च के लिहाज से उस तरह से काम नहीं कर रहे और उसकी उस तरह पब्लिकेशन भी नहीं होती। और लेकिन जापान उसके लहाज से मतलब बहुत तरक्की याफ्ता है और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं और इनकी रिसर्च दुनिया में मानी जाती है। बहुत स्लो अंदाज़ में, स्लो एंड स्टेडी अंदाज़ में, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज़ में वो रिसर्च आउटकम लेके आते हैं। इस वजह से शायद
1: जल्दी नहीं करते?
0: जल्दी नहीं करते,
1: अच्छा,
0: हम शायद थोड़े से शॉर्टकट भी ले लेते हैं कि जल्दी आउटकम आए और बस पब्लिकेशन ले लें, लेकिन जापान में बहुत स्लो लेके चलते हैं और उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इधर क्या बेहतरी है और इसको किस तरह करें, और फिर जो आउटकम निकलती है और वो वाकयन जो है वो दुनिया में सभी में मानी जाती है।

0: ये जापान में काम हुए.
1: सही, तो आपका रिसर्च किस हवाले से था?
0: मेरी रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो सॉइल में जो हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाती है, ये रिसेंटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वजह से, दूसरे जो वेस्ट वगैरह उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में आलूदगी होती जा रही है.
1: अच्छा,
0: तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आलूदगी वाली ज़मीन पे अगर हम पैदावार कर लें, वो अब कंटेमिनेशन उस फूड में आ सकती है.
1: सही.
0: अगर वो हम खाएंगे तो वो हमारे जिस्म तक आ जाएगी और उसकी बहुत कार्सिनोजेनिक, मतलब बहुत सीवियर डिजीजेज है. तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके हवाले से मेरी रिसर्च थी पीएचडी में.
1: अच्छा, गुजरांवाला मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये मसला वहाँ पे भी होगा. क्या समझते हैं आपके इस जो इस रिसर्च है, इससे उसमें कोई फ़ायदा होगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे?
0: गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है. और जैसे जापान में एक तरह से आलूदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से मैनेज नहीं किया जाता. इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है. अभी आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा मसला है उधर पानी का, और फिर वो पानी जो मिट्टी में जाता है वो मिट्टी भी आलूदगी हो जाती है. ये रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है. इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला अगर उधर काम करने का, तो इसको जो मैंने यहाँ रिसर्च की है पढ़े उसको उधर करेंगे,
1: इस्तेमाल में लाएंगे
0: इस्तेमाल
1: और
0: में
1: लोगों को
0: लाएंगे.
1: इससे फ़ायदा होगा
0: जी
1: डेफिनेटली. अच्छा, तो अब अगर आप वापस जाते हैं, लेट सपोज़ आप इसी काम के लिए जाते हैं जापान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ को मिस करेंगे जापान का, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी वहाँ पे?
0: सफाई के लिहाज से मतलब जापान काफ़ी ज़्यादा साफ है, रोड हर जगह, मतलब टॉयलेट, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ है. और दूसरा डिसिप्लिन लाइफ है बहुत ज़्यादा. हम उधर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं काफ़ी चीज़ों में. सच्चाई, ईमानदारी, ये वैसे जापान मशहूर है. तो ये भी चीज़ें काफ़ी मतलब के मिस करूँगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा हमारा रहना सहना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से होता है. इधर बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, हर चीज़ हर काम एक वक्त पे हो रहा है.
1: शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई है, जैसे कि हर चीज़ वक्त पे? मुझे तो काफ़ी फील हुआ था, और डिसिप्लिन भी थोड़ा सा भारी गुजरता है बंदा, एक साल तो लेता है. तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई थी?
0: मैं जिस टाइम आया था 2021 में, तो उस टाइम ये कोरोना का अभी एंड ही हो रहा था. मेरी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया था.
1: सही सही, ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में, शायद उन दिनों की बात.
0: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया. मुझे प्रोफेसर भी कहते तुम बड़े लकी हो.
1: सही.
0: उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी एक दो महीने बंद हो गई थी. तो बहरहाल मैं आया, और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया. फिर जब नागासाकी गया और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ. मतलब एक तनहा ज़िंदगी, और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ तो
1: हर बंदा अपने काम में मगन.
0: मगन है, और बहुत प्राइवेट लाइफ. मतलब कोई उस टाइम तो एक फासला बना लेते, चलते भी
1: हाँ हाँ वाकई
0: फासला
1: वो
0: बना
1: भी
0: लेते,
1: ज़्यादा हो
0: देखिए.
1: गया था.
0: हाँ,
1: सही.
0: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ. तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब एक दो माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई ख़ास कम्युनिकेशन नहीं है. एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा
1: तो लैंग्वेज सीख पाए या नहीं, इसके बारे में बताइए, जापानी जबान?
0: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल में कह सकता हूँ कि मुझे आ गए, मतलब कि बेसिक, बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ.
1: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, खास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है मिक्स्ड का स्कॉलरशिप,
0: जी,
1: इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक अम्बेसी ट्रैक है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक. अम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान अम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए. तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में.
1: सही.
0: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर PhD के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए. और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
1: सही.
0: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेते हैं. तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेज रहे होते हैं अम्बेसी को. फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है. اور پھر آپ یونیورسٹی آ جاتے ہیں. یہ امبیسی ٹریک جو ہے اسکالرشپ میکسڈ, اور دوسرا
1: ایک طریقہ ہے, یہ ایک طریقہ. اب ایک دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں,
0: دوسرا طریقہ ہے وہ بھی میکسڈ ہی ہے لیکن وہ یونیورسٹی ٹریک ہے.
1: اچھا,
0: اس میں آپ اپنے ریلیٹڈ جو یونیورسٹی ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اور ان کی فیکلٹی میں جا کے, ان کی فیکلٹی میں اپنے ریلیٹڈ جو ریسرچ پروفیسرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنی پروفائل انہیں شو کرواتے ہیں, اپنی سی وی انہیں بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی لیب میں کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اوکے کر دیتے ہیں پھر وہ یونیورسٹی جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور ڈاکومنٹیشن لیتی ہے اور پھر آپ کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور
1: صحیح. اچھا, تو اب یہاں این ایچ کے میں آپ ٹرانسلیٹر ہیں, تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ خبریں تو پڑھتے ہوں گے, تو یہاں بے خبروں کا آپ کا ترجمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے.
0: جی جی.
1: کیا فرق آپ کو محسوس ہوا جو دیگر میڈیا ہیں اور پاکستانی اور یہ جو این ایچ کے ہمارا ہے اس کی خبروں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟
0: پاکستانی میڈیا میں تھوڑا جذباتی نیوز زیادہ دیتے ہیں, مطلب ہیڈ لائنس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے ان کا فل زور کہ یہ کسی طرح لوگوں کی اٹریکشن لیں, لیکن این ایچ کے میں یہ زیادہ نیوز پہ اور اس کا کنٹینٹ پورا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے ہوا, اس کا نیچے فل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ نہ کرنا پڑے. تو وہ ایک ہی نیوز میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے اور یہ ابھی نیوز کیوں آ رہی ہے.
1: اچھا, بہت بہت شکریہ شبر صاحب دیوان خانہ کو ٹائم دینے کے لیے. ہمارے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ.
0: بہت شکریہ آپ کا.
2: جی سامعین, سید شبر حسین شاہ صاحب کی باتیں ہم نے سنی. آج گلوکار گن ہوشینو کا گیت سوزو ان کے نام کریں گے, اور آپ کو اس گانے کی تفصیل بتاتے چلیں کہ یہ گانا نینٹینڈو گیم سے منسوب ہے جو سپر ماریو برادرز کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر گایا گیا.
3: گین ہوشینو 1981 میں پیدا ہوئے سائتاما پرفیکچر سے تعلق رکھنے والے گین ہوشینو اداکار, موسیقار اور مصنف کے طور پر سرگرم ہیں.
2: انہوں نے این ایچ کے کی مارننگ ڈرامہ سیریز ہم بن آوی کے لیے تھیم سانگ بھی کمپوز کیا.
1: ہمارے جاپانی عملے کی رکن محترمہ اوراتا نے یہ گانا کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لفظ سوزو کا مطلب ہے تخلیق. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نئے ٹرانسلیٹر سید شبر حسین شاہ مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے.
3: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں. گیت کے بولوں میں ہیں, آئیے کچھ تخلیق کریں, آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں.
2: تو چلیے آئیے سنتے ہیں.

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, और अब जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत ही खुसूसी ऐलान।
0: जी दोस्तों, हम आइए जापानी बोलें का क्विज सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं जापानी ज़बानदानी, जिसमें जापानी ज़बान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाएगा।
2: इस नामुकम्मल जुमले में खाली छोड़ी गई जगह को आपने पुर करना है और मज़कूरा मिसिंग लफ्ज़ लिखकर हमें रवाना करना है।
1: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारे होम पेज पर दीवान खाना के पेज पर मेज़बानों की तस्वीर वाले हिस्से में पोस्ट की जाएगी।
2: दीवान खाना के पेज तक रसाई का तरीका बताते चलें कि आपने खोलना है हमारा पेज nhk.jp/urdu, फिर शोज ऑन डिमांड के उनवान पर जाके दीवान खाना के सफ़े तक पहुँच कर 24 मई के प्रोग्राम की वेबसाइट खोलिए।
0: इस पेज पर क्विज के जुमले वाली तस्वीर नजर आएगी, इसको देखकर अपना जवाब सोचना है और हमें रवाना कर देना है, और दुरुस्त जवाब वाले सामीन यानी क्विज में शरीक होने वाले सामे का नाम हम दीवान खाना में नश्र करेंगे।
1: तो 24 मई के शो के सफ़े पर 10 सवाल हैं। हारूसा हाउसु वा डैश डैश डैश,
0: इस इबारत में मौजूद खाली जगह पुर करनी है, क्योंकि नामुकम्मल इबारत यानी के सवाल में सिर्फ हारूसान हाउसुआ डैश डैश डैश मौजूद है, लिहाजा बाकी अल्फाज आपने अपने जवाब के तौर पर लिखने हैं।
2: इसके लिए हम आपको इशारा देंगे कि यह हमारे इबारत हमारे होम पेज पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के कौन से सबक नंबर में है, ताकि आप वहां जाएं, दुरुस्त जवाब तलाश करें। और अभी हमने जो जुमला बताया हारूसा हाउस वा देश देश देश देश, इसका जवाब हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के सबक नंबर 1 में मौजूद है।
1: आइए जापानी बोलने के असबाक के मुतल्लिक का सफ़े तक रसाई हासिल करके इस सबक में जवाब तलाश करें।
2: जी सामिन, आप अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म अलखत में या फिर रोमन हरूफ में लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाब हमारे प्रोग्राम दीवान खाना में पेश किए जाएंगे और क्विज में शरीक होने वाले हर सामे का नाम हम दीवान खाना में शरीक करेंगे, दुरुस्त जवाब वाले सामे का नाम शामिल करेंगे। और अब अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते टोक्यो का मानक सूचकांक सोमवार को पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार कर गया। निक्केई 225 सूचकांक शुक्रवार के मुकाबले कुछ समय के लिए 3.2% यानी करीब 2000 अंक बढ़ा। सूचकांक ने एक दिन के कारोबार में पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार किया। बाजार खुलने के तुरंत बाद विशेषकर सेमीकंडक्टर संबंधित शेयरों की लिवाली हुई। ऐसा शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के बाद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। न्यूयॉर्क में भावी सौदों का WTI मानक सूचकांक रविवार को एक समय करीब $91 प्रति बैरल तक लुढ़का, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 5% की गिरावट है। दिन के अंत में निक्केई सूचकांक सर्वोच्च 65,158 पर बंद हुआ, जो रविवार से लगभग 3% अधिक है। जापान में 10 जून को प्रक्षेपित किए जाने वाले H-3 रॉकेट का मुख्य भाग रविवार को मीडिया को दिखाया गया। दक्षिण पश्चिमी जापान के कागोशिमा प्रिफेक्चर स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र के एक विनिर्माण भवन में प्रक्षेपण की तैयारियां चल रही हैं। छठा H-3 रॉकेट टाइप 30 नामक एक नया प्रायोगिक यान है, जिसमें बूस्टर का उपयोग नहीं होगा। इसके पहले चरण में तरल ईंधन वाले 3 मुख्य इंजन हैं, जो पिछले मॉडलों की तुलना में एक अधिक है। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि बूस्टर के बिना तरल ईंधन वाले एक बड़े रॉकेट को प्रक्षेपित करने का ये जापान का पहला प्रयास होगा। कच्चे तेल से भरा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए जापान पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से जापानी प्रबंधन वाला ये पहला तेल टैंकर है जिसने ये जलमार्ग पार किया है। प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान की एक सहायक कंपनी पनामा के ध्वज वाले इदेमित्सु मारू जहाज का प्रबंधन करती है। ये जहाज सोमवार सुबह मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रिफेक्चर स्थित एक केंद्र पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार जहाज पर चालक दल के 3 जापानी सदस्य सवार थे, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। कंपनी के अनुसार इस टैंकर में सऊदी अरब से लगभग 20 लाख बैरल तेल लाया गया है, जिससे एक रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाएंगे।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से संभवतः अंतिम चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने वार्ता में शामिल देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और मध्यस्थ पाकिस्तान शामिल हैं। दोनों पक्षों के मीडिया केंद्र समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु की खबर दे रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने और वार्ता जारी रखते हुए ईरानी कच्चे तेल तथा अन्य निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के प्रावधान शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि अमरीकी समुद्री नाकाबंदी और होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 दिन तथा परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए समानांतर रूप से 60 दिन निर्धारित किए जाने चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और मध्यस्थ देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप एक ऐसे समझौते को स्वीकार करने के करीब हैं जिसके तहत वॉशिंगटन और तेहरान को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 30 दिन का समय मिला।

0: देगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन और तेहरान 60 दिनों की अवधि वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा। इसके बदले में अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा लेगा और तेहरान को स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति देने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ईरान होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम को लेकर मीडिया में अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। एक्सियोस के अनुसार समझौते के मसौदा ज्ञापन में कहा गया है कि तेहरान कभी भी परमाणु हथियार रखने का प्रयास नहीं करेगा और यूरेनियम संवर्धन को रोकने तथा अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से निपटने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित किसी भी उपाय को स्वीकार नहीं किया है। एजेंसी का ये भी कहना है कि ईरान अपनी जब्त की गई परिसंपत्तियों को छुड़वाना चाहता है। यूक्रेन पर किए गए रूस के एक बड़े हमले में कीव और अन्य जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि रूसी सेना ने इसमें मध्यम दूरी की अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार यह हमला रविवार सुबह तक जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में 2 लोगों की मौत हो गई और 78 घायल हो गए। उनके अनुसार राजधानी के आसपास के कीव क्षेत्र में भी 2 लोग मारे गए हैं। एक निवासी ने NHK को बताया कि उसके हाथ जो भी लगा उसे उठाते हुए वो एक मेट्रो स्टेशन की ओर भागी जिसे आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। महिला ने बताया कि उसने पहली बार इतना लंबा और भयावह हमला देखा। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में कीव क्षेत्र के एक नगर की ओर ओरेशनिक मिसाइल दागी है। रूस की इस नई मिसाइल को रोकना मुश्किल बताया जा रहा है। उत्तरी फिलीपींस में पुलिस और आपातकर्मी एक ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे 10 से अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मध्यवर्ती क्षेत्र लूजोन के पम्पांगा प्रांत में एक निर्माणाधीन 9 मंजिला इमारत रविवार तड़के करीब 3 बजे ढह गई। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 26 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है जो पास के ही एक होटल में ठहरा हुआ था जो मलबे के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही।

0: है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: यूकी गा मिताई देस। होक्काइडो नि इकिताई देस।
2: होक्काइडो いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: निहोन नि वा नारेमाश्ता का?
0: जापान की आदत हो गई?
1: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय।
0: जी।
1: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
0: जापान में क्या करना चाहती हैं?
1: ताम ने कहा,
3: युकी गा मिताई देस।
0: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नि इकिताई देस।
0: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
1: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो ई ने।
0: होक्काइडो अच्छा है।
1: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तोमोदाचि नि आइताई देस।
0: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया?
0: अरे।
1: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
4: डाइजोबु?
0: ठीक तो हो?
4: काओगा अकाइयो?
0: चेहरा लाल हो गया है।
1: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: युकी गा मिताई देस,
0: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: इसमें
5: युकी
1: का अर्थ है बर्फबारी और
5: मिताई देस
1: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
1: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
5: होक्काइडो नि इकिताई देसु,
1: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ, और दूसरा है
5: तोमोदाचि नि आइताई देसु,
1: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
1: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही हैं कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
6: रामेन गा तबेताई देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
0: जापान में क्या करना चाहते हैं?
5: निहोन दे
1: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
5: नानी
1: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
5: दोन्ना कोतो
1: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम, और भाव है क्या।
5: शिताई
1: है क्रिया,
5: शिमास
1: यानी करना का ताई रूप।
0: इसके बाद आदमी

0: ने उत्तर दिया,
1: रामेन गा ताबेताई देस,
2: रामेन खाना चाहता हूँ।
0: इसमें
3: ताबेताई
0: है क्रिया
3: ताबेमास
0: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देस का, रामेन गा ताबेताई देस।
2: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योटो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे?
0: मंदिर के नाम का उच्चारण है
3: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
0: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
3: इकिमास, इकिमास।
0: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
3: किंकाकुजी नी इकिमास।
0: तो अब कोशिश कीजिए।
4: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
3: दाइजोबु, दाइजोबु
0: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
3: दाइजोबु देस का।
0: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: निहोन नी वा नारेमाश्ता का? 日本でどんなことがしたいですか？
6: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
6: あと、友達に会いたいです。
5: おや？
3: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
0: दोस्तों जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
2: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
0: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
2: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
0: एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
2: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
0: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी

अनुसार 25 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते टोक्यो का मानक सूचकांक सोमवार को पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार कर गया। निक्केई 225 सूचकांक शुक्रवार के मुकाबले कुछ समय के लिए 3.2% यानी करीब 2,000 अंक बढ़ा। सूचकांक ने एक दिन के कारोबार में पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार किया। बाजार खुलने के तुरंत बाद विशेषकर सेमीकंडक्टर संबंधित शेयरों की लिवाली हुई। ऐसा शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के बाद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। न्यूयॉर्क में भावी सौदों का WTI मानक सूचकांक रविवार को एक समय करीब $91 प्रति बैरल तक लुढ़का, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 5% की गिरावट है। दिन के अंत में निक्केई सूचकांक सर्वोच्च 65,158 पर बंद हुआ, जो रविवार से लगभग 3% अधिक है। जापान में 10 जून को प्रक्षेपित किए जाने वाले H-3 रॉकेट का मुख्य भाग रविवार को मीडिया को दिखाया गया। दक्षिण पश्चिमी जापान के कागोशिमा प्रिफेक्चर स्थित तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र के एक विनिर्माण भवन में प्रक्षेपण की तैयारियां चल रही हैं। छठा H-3 रॉकेट टाइप 30 नामक एक नया प्रायोगिक यान है, जिसमें बूस्टर का उपयोग नहीं होगा। इसके पहले चरण में तरल ईंधन वाले 3 मुख्य इंजन हैं, जो पिछले मॉडलों की तुलना में एक अधिक है। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि बूस्टर के बिना तरल ईंधन वाले एक बड़े रॉकेट को प्रक्षेपित करने का ये जापान का पहला प्रयास होगा। कच्चे तेल से भरा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए जापान पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से जापानी प्रबंधन वाला ये पहला तेल टैंकर है जिसने ये जलमार्ग पार किया है। प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान की एक सहायक कंपनी पनामा के ध्वज वाले इदेमित्सु मारु जहाज का प्रबंधन करती है। ये जहाज सोमवार सुबह मध्यवर्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर स्थित एक केंद्र पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार जहाज पर चालक दल के 3 जापानी सदस्य सवार थे, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। कंपनी के अनुसार इस टैंकर में सऊदी अरब से लगभग 20 लाख बैरल तेल लाया गया है, जिससे एक रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाएंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से संभवतः अंतिम चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने वार्ता में शामिल देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और मध्यस्थ पाकिस्तान शामिल हैं। दोनों पक्षों के मीडिया केंद्र समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु की खबर दे रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने और वार्ता जारी रखते हुए ईरानी कच्चे तेल तथा अन्य निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के प्रावधान शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि अमरीकी समुद्री नाकाबंदी और होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 दिन तथा परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए समानांतर रूप से 60 दिन निर्धारित किए जाने चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और मध्यस्थ देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप एक ऐसे समझौते को स्वीकार करने के करीब हैं जिसके तहत वॉशिंगटन और तेहरान को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन और तेहरान 60 दिनों की अवधि वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा लेगा और तेहरान को स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति

0: देने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ईरान होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम को लेकर मीडिया में अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। एक्सियोस के अनुसार समझौते के मसौदा ज्ञापन में कहा गया है कि तेहरान कभी भी परमाणु हथियार रखने का प्रयास नहीं करेगा और यूरेनियम संवर्धन को रोकने तथा अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से निपटने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित किसी भी उपाय को स्वीकार नहीं किया है। एजेंसी का ये भी कहना है कि ईरान अपनी जब्त की गई परिसंपत्तियों को छुड़वाना चाहता है। यूक्रेन पर किए गए रूस के एक बड़े हमले में कीव और अन्य जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि रूसी सेना ने इसमें मध्यम दूरी की अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार यह हमला रविवार सुबह तक जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में 2 लोगों की मौत हो गई और 78 घायल हो गए। उनके अनुसार राजधानी के आसपास के कीव क्षेत्र में भी 2 लोग मारे गए हैं। एक निवासी ने NHK को बताया कि उसके हाथ जो भी लगा उसे उठाते हुए वो एक मेट्रो स्टेशन की ओर भागी जिसे आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। महिला ने बताया कि उसने पहली बार इतना लंबा और भयावह हमला देखा। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में कीव क्षेत्र के एक नगर की ओर ओरेशनिक मिसाइल दागी है। रूस की इस नई मिसाइल को रोकना मुश्किल बताया जा रहा है। उत्तरी फिलीपींस में पुलिस और आपातकर्मी एक ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे 10 से अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मध्यवर्ती क्षेत्र लूजोन के पम्पांगा प्रांत में एक निर्माणाधीन 9 मंजिला इमारत रविवार तड़के करीब 3 बजे ढह गई। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 26 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है जो पास के ही एक होटल में ठहरा हुआ था जो मलबे के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारे माश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोटो गा शिताई देस का?
3: यूकी गा मितताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。

0: おや？
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
3: पहले हारू जी ने ताम से पूछा,
0: निहोन नि वा नारेमाश्ता का?
2: जापान की आदत हो गई?
3: ताम ने जवाब दिया,
0: हाय
2: जी।
3: उसके बाद हारू जी ने कहा,
0: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देसु का?
2: जापान में क्या करना चाहती हैं?
3: ताम ने कहा,
4: युकी गा मिताई देसु।
2: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
4: होक्काइडो नी इकिताई देसु।
2: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
3: तब मिया ने कहा,
0: होक्काइडो ई ने।
2: होक्काइडो अच्छा है।
3: ताम ने आगे कहा,
4: अतो तोमोदाच नी आइताई देसु।
2: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
3: हारू जी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
0: ओया?
2: अरे।
3: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
0: डाइजोब?
2: ठीक तो हो?
0: खाओगा खाइयो?
2: चेहरा लाल हो गया है।
3: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
4: युकी गा मिताई देसु,
2: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
3: इसमें
0: युकी
3: का अर्थ है बर्फबारी और
0: मिताई देसु
3: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
3: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
0: होक्काइडो नी इकिताई देसु,
3: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ। और दूसरा है
0: तोमोदाच नी आइताई देसु,
3: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
2: एक और जरूरी बात ये है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
3: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देसु।
2: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
0: मिताई देसु, युकी गा मिताई देसु।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही है कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
5: रामेन गा तबेताई देसु।
3: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
4: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
2: जापान में क्या करना चाहते हैं?
0: निहोन दे
3: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
0: नानी
3: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
0: दोन्ना कोतो
3: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम, और भाव है क्या।
0: शिताई
3: है क्रिया,
0: शिमास
3: यानी करना का ताई रूप।
2: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया,
5: रामेन गा तबेताई देसु,
3: रामेन खाना चाहता हूँ।
2: इसमें
0: तबेताई
2: है क्रिया,
0: तबेमास
2: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
0: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? रामेन गा तबेताई देसु।
3: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी

0: मंदिर जाना चाहते हैं तो ये बात कैसे बताएंगे?
1: मंदिर के नाम का उच्चारण है
2: किंकाकुजी, किंकाकुजी,
1: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
2: इकिमास, इकिमास।
1: तो किंकाकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
2: किंकाकुजी नी इकिमास।
1: तो अब कोशिश कीजिए।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था। आप भी याद कर लीजिए।
2: दाइजोबु, दाइजोबु
1: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
2: दाइजोबु देसु का।
1: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: 日本には慣れましたか？
5: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
4: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
1: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
0: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
1: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
0: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: एक और जरूरी बात यह है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
0: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुहिदे पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मकसद से बज़ाहिर आखिरी लम्हात की मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सालिस पाकिस्तान शामिल थे। दोनों अतराफ के ज़राए इब्लाग के इदारे मुफाहमत की याददाश्त के मुंदरजात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज पर लिबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई खत्म करने और ईरानी खाम तेल और दीगर बरामदात पर से पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने की शिकें शामिल हैं, जबकि बातचीत जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी और आबनाए हुरमत से मुतालिक मसाइल के लिए 30 दिन मखसूस किए जाएंगे। जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए इसके मुतवाजी 60 दिन मुख्तस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका और सालसी करने वाले ममालिक के हुक्काम के हवाले से कहा है कि ट्रंप एक ऐसे मुहाइदे को कबूल करने के करीब हैं जिससे वॉशिंगटन और तेहरान को हतमी मुहाइदे तक पहुंचने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। अहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मुद्दत में 1 माह की तौसी की जा सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑक्सियस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत करेंगे जो 60 दिन तक के लिए होगी। इत्तलात के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि आबनाए हुरमस इस मुद्दत के दौरान बगैर किसी महसूल के खुली रहेगी। इसके इवज अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में कुछ छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर याददाश्त पर दस्तखत हो जाएं तब भी ईरान आबनाए हुरमस पर कंट्रोल जारी रखने का इरादा रखता है। ज़राए इब्लाग ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। ऑक्सियस के मुताबिक याददाश्त के मुसवदे में कहा गया है कि तेहरान कभी भी जौहरी हथियार रखने की कोशिश नहीं करेगा और यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के लिए अपने जखायर को संभालने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म के इकदाम को कबूल नहीं किया। न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान मुंजमिद असासों को जारी करने का मुतालबा कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमले में कीव और दीगर मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रूसी अफवाज ने ओरेशिंग का इस्तेमाल किया जो उनका जदीद तरीन दरमियानी फासले तक मार करने वाला बिलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन की फजाइया ने ऐलान किया कि यह हमला इतवार की सुबह तक किया गया। हुकाम ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत कीव में 2 अफराद हलाक और 78 जख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अफराद दारुल हुकूमत के गिर्द वाके कीव खित्ते में मारे गए। एक रिहायशी ने एनएचके को बताया कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसे लेकर पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सबवे स्टेशन पर चली गई। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहला मौका था जब उन्हें इतने तवील और खौफनाक हमले का तजर्बा हुआ। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। उनका कहना था कि रूस ने दारुल हुकूमत से 80 किलोमीटर जनूब में कीव खित्ते के कस्बे की जानिब ओरेशिंग दागा था। कहा जाता है कि रूस के इस जदीद तरीन मिसाइल को रोकना मुश्किल है।
1: और अब आज की अहम खबरों की 6 सुर्खियां। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात में पेशरफ्त की तवक्को पर टोक्यो का कलीदी मियारी इशारिया पीर को पहली बार 65,000 की बुलंदी तक जा पहुंचा। اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کے روز میڈیا کو دکھایا گیا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: जाना चाहती हूँ।
1: मियाँ कहती है,
2: होक्काइडो ई ने।
0: होक्काइडो बहुत उम्दा।
1: तम अपनी बात जारी रखती है,
3: अतो तोमोदाची नी आइताई देस।
0: और दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: हारूसान के जज्बात से मुतालिक सेंसर कुछ महसूस करते हैं और उनके गालों पर गुलाबी रोशनियाँ जलने बुझने लगती हैं। वो कहती हैं,
2: ओया।
0: अरे
1: मियाँ भी ताम के चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात महसूस करते हुए पूछती है,
2: डाइजोबे
0: तुम ठीक हो?
2: खाओगा खाइयो।
0: तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है।
1: दोस्त से मिलने की बात के वक्त ताम का चेहरा सुर्ख हो गया। लगता है कोई खास दोस्त है।
0: इससे मुतालिक तफसील आगे आएगी।
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं बर्फ देखना चाहती हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो अपने आइंदा के इरादे का इजहार कर सकते हैं।
0: और अब आज के कलीदी जुमले की तशरीह। युकी का मतलब है बर्फ और मिताई देस यानी देखना चाहता हूँ। अब आज का नुक्ता, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बताने के लिए फेल की मस शक्ल से मस हटाकर उसकी बजाय ताई लगाया जाता है।
1: फेल मीरू यानी देखना की मस शक्ल है मीमास, तो ये बनेगा मिताई, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक। और आखिर में देस लगाने से जुमला शाइस्ता हो जाएगा। आज के मकालमे में दो और जुमले, होक्काइडो नी इकिताई देस और तोमोदाची नी आइताई देस भी इसी अंदाज के हैं। दूसरा नुक्ता हरूफ जार का इस्तेमाल है। मफूल या मकसद के लिए हरफ जार ओ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसके बाद का फेल ताई शक्ल में हो तो उसकी बजाय दूसरा हरफ जार गा इस्तेमाल किया जाएगा।
1: मैं बर्फ देखूंगी की जापानी होगी युकी ओ मिमास, जबकि मैं बर्फ देखना चाहती हूँ को कहेंगे युकी गा मिताई देस।
0: जी हाँ।
1: और अब वक्त हुआ है मश्क का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: मिताई देस, युकी गा मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: जापान में क्या करने का इरादा है, अब इस बारे में एक मकालमा सुनिए।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
5: रामेन गा तबेताई देसु।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
1: जापान में आप क्या करना चाहते हैं?
0: निहोन दे के मायने हैं जापान में। क्या करना चाहते हैं पूछने में क्या के लिए नानी इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम इस सवालिया लफ्ज नानी की बजाय दोन्ना को तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मकालमे में हारूसान ने इस्तेमाल किया है। शिताई फेल शिमास यानी करना की ताई शक्ल है।
5: रामेन गा ताबेताई देस।
1: मैं रामेन नूडल्स खाना चाहता हूँ।
0: ताबेताई फेल ताबेमास यानी खाना की ताई शक्ल है।
1: तो सामेइन मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? रामेन गा ताबेताई देसु, रामेन गा ताबेताई देसु।
0: अब आप मजीद जो करना चाहते हैं उनके बारे में बताने की मश्क कीजिए। मसलन आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर के नाम का तलफ्फुज़ है
2: किंग काकुजी, किंग काकुजी।
0: और जाना है
2: इकिमास, इकिमास।
0: मैं किंग काकुजी जाऊंगा, ये जापानी तो होगी, किंग काकुजी नी इकिमास। अब आप बताएं मैं किंग काकुजी जाना चाहता हूँ को क्या कहेंगे।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देसु, किंकाकुजी नी इकिताई देसु।
0: अगर आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर गर्मियों का हल्का किमोनो युकाता खरीदना चाहते हैं तो ये किस तरह कहेंगे। युकाता का दुरुस्त तलफ्फुज है
2: युकाता, युकाता।
0: और खरीदने को कहते हैं
2: काइमास, काइमास।
0: तो सामीन कोशिश करें।
3: युकाता गा काइताई देसु, युकाता गा काइताई देसु।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मियाँ ने ताम से उस वक्त कहा था जब ताम का चेहरा सुर्ख हो गया था, इसे इसी तरह याद कर लें।
2: डाइजोबु,
0: डाइजोबु यानी क्या तुम ठीक हो, मुखातिब के बारे में फिक्रमंदी का इजहार है। शाइस्ता अंदाज में इसे कहेंगे डाइजोबु देसु का। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ठीक हैं और आप कहना चाहें मैं ठीक हूँ तो यूं कहेंगे
2: डाइजोबु देसु, डाइजोबु देसु।
1: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुने।
5: डाइजोबु,
6: डाइजोबु,
7: डाइजोबु।
1: سامعین اب آپ کسے دہرانے کی باری ہے.
2: دائجوبو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے.
6: نیہون نیوا نارے ماشتا کا؟
7: ہائی.
6: نیہون دے دون نا کوتو گا شتائی دیس کا؟
7: یوکی گا میتائی دیس. ہوکائیدو نی ایکیتائی دیس.
8: ہوکائیدو؟ ای نے.
7: اتو تومودچی نی آئیتائی دیس.
6: اویا؟
2: دائجوبو؟ کاؤ گا اکائی یو.
9: ہارو-سان نو چیے بکرو.
1: اب ہارو-سان کی زنبیل کا کارنر. آج کے مکالمے کا مقام ہارو-سان ہاؤس کی بیٹھک ہے. اس مناسبت سے جاپانی گھروں اور طرز زندگی کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: کمروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہر گھر مختلف ہوتا ہے، لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں، جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے. مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے. ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے، اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے. اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں.
1: انور صاحب، جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تاتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں، جنہیں فوتون کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں. تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں. ان میں کم از کم ایک تاتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے.
1: تاتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے.
0: جی بالکل. ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر، جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے بنی تاتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے. سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते टोक्यो का मानक सूचकांक सोमवार को पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार कर गया। निक्केई 225 सूचकांक शुक्रवार के मुकाबले कुछ समय के लिए 3.2% यानी करीब 2,000 अंक बढ़ा। सूचकांक ने एक दिन के कारोबार में पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार किया। बाजार खुलने के तुरंत बाद विशेषकर सेमीकंडक्टर संबंधित शेयरों की लिवाली हुई। ऐसा शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई तेजी के बाद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। न्यूयॉर्क में भावी सौदों का WTI मानक सूचकांक रविवार को एक समय करीब $91 प्रति बैरल तक लुढ़का, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 5% की गिरावट है। दिन के अंत में निक्केई सूचकांक सर्वोच्च 65,158 पर बंद हुआ, जो रविवार से लगभग 3% अधिक है। जापान में 10 जून को प्रक्षेपित किए जाने वाले H-3 रॉकेट का मुख्य भाग रविवार को मीडिया को दिखाया गया। दक्षिण पश्चिमी जापान के

इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से जापानी प्रबंधन वाला ये पहला तेल टैंकर है जिसने ये जलमार्ग पार किया है। प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान की एक सहायक कंपनी पनामा के ध्वज वाले इदेमित्सु मारू जहाज का प्रबंधन करती है। ये जहाज सोमवार सुबह मध्यवर्ती जापान के आईजी प्रिफेक्चर स्थित एक केंद्र पर पहुंचा। सूत्रों के अनुसार जहाज पर चालक दल के 3 जापानी सदस्य सवार थे जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। कंपनी के अनुसार इस टैंकर में सऊदी अरब से लगभग 20 लाख बैरल तेल लाया गया है जिससे एक रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाएंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से संभवतः अंतिम चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने वार्ता में शामिल देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और मध्यस्थ पाकिस्तान शामिल हैं। दोनों पक्षों के मीडिया केंद्र समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु की खबर दे रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने और वार्ता जारी रखते हुए ईरानी कच्चे तेल तथा अन्य निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के प्रावधान शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि अमरीकी समुद्री नाकाबंदी और होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित मुद्दों के लिए 30 दिन तथा परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए समानांतर रूप से 60 दिन निर्धारित किए जाने चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और मध्यस्थ देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप एक ऐसे समझौते को स्वीकार करने के करीब हैं जिसके तहत वॉशिंगटन और तेहरान को अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन और तेहरान 60 दिनों की अवधि वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा लेगा और तेहरान को स्वतंत्र रूप से तेल बेचने की अनुमति देने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ईरान होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम को लेकर मीडिया में अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। एक्सियोस के अनुसार समझौते के मसौदा ज्ञापन में कहा गया है कि तेहरान कभी भी परमाणु हथियार रखने का प्रयास नहीं करेगा और यूरेनियम संवर्धन को रोकने तथा अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार से निपटने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित किसी भी उपाय को स्वीकार नहीं किया है। एजेंसी का ये भी कहना है कि ईरान अपनी जब्त की गई परिसंपत्तियों को छुड़वाना चाहता है। यूक्रेन पर किए गए रूस के एक बड़े हमले में कीव और अन्य जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि रूसी सेना ने इसमें मध्यम दूरी की अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार यह हमला रविवार सुबह तक जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव में 2 लोगों की मौत हो गई और 78 घायल हो गए। उनके अनुसार राजधानी के आसपास के कीव क्षेत्र में भी 2 लोग मारे गए हैं। एक निवासी ने एनएचके को बताया कि उसके हाथ जो भी लगा उसे उठाते हुए वो एक मेट्रो स्टेशन की ओर भागी जिसे आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। महिला ने बताया कि उसने पहली बार इतना लंबा और भयावह हमला देखा। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूस ने राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में कीव क्षेत्र के एक नगर की ओर ओरेशनिक मिसाइल दागी है। रूस की इस नई मिसाइल को रोकना मुश्किल बताया जा रहा है।

0: उत्तरी फिलीपींस में पुलिस और आपातकर्मी एक ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे 10 से अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मध्यवर्ती क्षेत्र लूजोन के पम्पांगा प्रांत में एक निर्माणाधीन 9 मंजिला इमारत रविवार तड़के करीब 3 बजे ढह गई। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 26 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है जो पास के ही एक होटल में ठहरा हुआ था, जो मलबे के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: युकी गा मिताई देस। 北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや、大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
1: जापान की आदत हो गई?
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मिताई देस।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देस।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तमोदाचि नी आइताई देस।
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया?
1: अरे।
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोबु?
1: ठीक तो हो?
2: काओगा अकाइयो?
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: युकी गा मिताई देस,
1: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
0: इसमें
4: युकी
0: का अर्थ है बर्फबारी और
4: मिताई देस
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
0: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
4: होक्काइडो नी इकिताई देस,
0: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ। और दूसरा है
4: तोमोदाचि नी आइताई देस,
0: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: एक और जरूरी बात ये है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
0: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
1: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही हैं कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
5: रामेन गा तबेताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
3: 日本で何がしたいですか？
1: ジャパンめ क्या करना चाहते हैं?
4: 日本で。
0: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
4: नानी
0: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
4: दोन्ना कोतो
0: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम और भाव है क्या।
4: श्ताई
0: है क्रिया,
4: शिमास
0: यानी करना का ताई रूप।
1: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया
5: रामेन गा थाबेताई देस,
0: रामेन खाना चाहता हूँ।
1: इसमें
4: थाबेताई
1: है क्रिया,
4: थाबेमास
1: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का, रामेन गा थाबेताई देस।
0: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे?
1: मंदिर के नाम का उच्चारण है
4: किंग काकुजी, किंग काकुजी।
1: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
4: इकिमास, इकिमास।
1: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
4: किंकाकुजी नी इकिमास।
1: तो अब कोशिश कीजिए।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
4: दाइजोबु, दाइजोबु
1: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
4: दाइजोबु देसु का।
1: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: निहोन नी वा नारेमाशिता का? 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや
6: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: और अब बारी है अंश हारूजी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी।

0: इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
1: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
0: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
1: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
0: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
0: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुहिदे पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मकसद से बज़ाहिर आखिरी लम्हात की मुशावरत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सालिस पाकिस्तान शामिल थे। दोनों अतराफ के ज़राए इब्लाग के इदारे मुफाहमत की याददाश्त के मुंदरजात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज पर लिबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई खत्म करने और ईरानी खाम तेल और दीगर बरामदात पर से पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने की शिकें शामिल हैं, जबकि बातचीत जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी और आबनाए हुरमत से मुतालिक मसाइल के लिए 30 दिन मखसूस किए जाएंगे। जोहरी मामले पर मुजाकरात के लिए इसके मुतवाजी 60 दिन मुख्तस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका और सालसी करने वाले ममालिक के हुक्काम के हवाले से कहा है कि ट्रंप एक ऐसे मुहाइदे को कबूल करने के करीब हैं जिससे वॉशिंगटन और तेहरान को हतमी मुहाइदे तक पहुंचने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। अहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मुद्दत में 1 माह की तौसी की जा सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑक्सियस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत करेंगे जो 60 दिन तक के लिए होगी। इत्तलात के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि आबनाए हुरमस इस मुद्दत के दौरान बगैर किसी महसूल के खुली रहेगी। इसके इवज अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में कुछ छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर याददाश्त पर दस्तखत हो जाएं तब भी ईरान आबनाए हुरमस पर कंट्रोल जारी रखने का इरादा रखता है। ज़राए इब्लाग ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। ऑक्सियस के मुताबिक याददाश्त के मुसवदे में कहा गया है कि तेहरान कभी भी जौहरी हथियार रखने की कोशिश नहीं करेगा और यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के लिए अपने जखायर को संभालने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म के इकदाम को कबूल नहीं किया। न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान मुंजमिद असासों को जारी करने का मुतालबा कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमले में कीव और दीगर मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रूसी अफवाज ने ओरेशिंग का इस्तेमाल किया जो उनका जदीद तरीन दरमियानी फासले तक मार करने वाला बिलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन की फजाइया ने ऐलान किया कि यह हमला इतवार की सुबह तक किया गया। हुकाम ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत कीव में 2 अफराद हलाक और 78 जख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अफराद दारुल हुकूमत के गिर्द वाके कीव खित्ते में मारे गए। एक रिहायशी ने एनएचके को बताया कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसे लेकर पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सबवे स्टेशन पर चली गईं। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहला मौका था जब उन्हें इतने तवील और खौफनाक हमले का तजर्बा हुआ। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। उनका कहना था कि रूस ने दारुलहुकूमत से 80 किलोमीटर जनूब में कीव खित्ते के कस्बे की जानिब ओरेशिंग दागा था। कहा जाता है कि रूस के इस जदीद तरीन मिसाइल को रोकना मुश्किल है।
1: और अब आज की अहम खबरों की 6 सुर्खियां। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात में पेशरफ्त की तवक्को पर टोक्यो का कलीदी मियारी इशारिया पीर को पहली बार 65,000 की बुलंदी तक जा पहुंचा। اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کے روز میڈیا کو دکھایا گیا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔